0: नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ या हजुरको घरमा लिकेज छ, छतबाट पानी चुहिने, भित्तामा दाग देखिने, पेन्ट बिग्रिने वा स्ट्रक्चर कमजोर हुँदै गएको छ, यस्तो समस्या समयमै समाधान नगरेमा पछि ठूलो क्षति पनि हुन सक्छ। दिवार फुट्ने, छाना झन कमजोर हुने, करेन्ट लाग्ने र घरको मजबुती घट्ने खतरा हुन्छ। अब चिन्ता लिनु पर्दैन। धनगढ़ी वाटर प्रुफिङ एण्ड होम डेकोरले ल्याएको छ वाटर प्रुफिङ र होम डेकोर सम्बन्धित पीभीसी, डब्ल्यूपीसी र प्लेटेड प्यानलको काम र बिक्रीको सेवा पनि गरिन्छ। धनगढ़ी वाटर प्रुफिङ एण्ड होम डेकोर, टिकापुरका लागि सम्पर्क भरत अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी कण पछाडि, फोन नम्बर 98648 36213।
1: कौनो व्यक्ति है लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका ओ शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार ओ नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
2: कोट पीट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरजस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैठे नाई देना, बोले नाई देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई।
1: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठ।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, काकना हो काकना हो। बाबा फिर होस्ट पार्टी गतिलो ठाउं से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर भर थी राहत
0: का हुई। कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटास गोर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला दस काटस बाटिन। ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में। रत गैया झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: सबै कुरा पाउने रहेछ, लु भन त भाउ के पाउँछ त्यहाँ?
4: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर, धक तराजु, घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
5: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो, त्यो त मलाई पनि थाहा छ। त्यहाँ त ग्यास, ग्यास चुला, नलकाका सामान, किला काका सबै पाइन्छ नि।
6: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट, घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
3: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ।

0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नहीं सकी, जब सम हमरे सबको भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हुई भी भ्रष्टाचार करुया मनई न खुल के विरोध कही। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाख सबको जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान।

0: त्यतै सब मार्दै मार्दै चाहिँ काटी
1: नाता छ भाइ साँप कुछु नि कराइल सम साँप कुछु नि कर्ट ल्या ऊ अपने चल गेल त कुछु कराइल त ओ सक्कु साँप बिखा थिए नि र त
0: बिखा हो कि नि हो कसी कति नाता दाई
2: ल्या नेपालमा पाँचजना बिखा साँपनको विषयमा सुन एक ठोरठ गरैचा जोन खास कै ख राति समयमा घरभित्र पैठ सेक्ठ यी कटलसे निबठाई फे स्याकट तर कटलक पाछ डेही भाग जो निचलना कै ख सास फ्यार जो निसेकना मेसे लक्क होइ सेक्ठ औरठ डोम जोन बडा रिसाह मेरिक रठ निकर फाँट फुले ठ डोम साँप दिन वा रात दुनुमा देख पर्ना ओ खास कै ख सन्ध्या बिहान देख पर्छ निकर कटलसे फे लक्क होइ सेक्ठ ओ औरठ कैरी जातक साँप निकर कटल कलसे कटलक भाग सुई था ओ बड़ा कर रसे बठे था रकत थे पाची होकर रकत बहना हुई से था उसने कहा हमारे देशक तरह एक सक्कू भूभाग में पा देना बगोपने न फुनकार ना बाधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तरह हिकर न कटाई एकदम खतरनाक रहा
3: बर्खा छ्याको अनाज भिटिना समयमा सापनका कटाई अथवा डसाईका घटना ढिउ मिलाएका था बैया वो और प्राकृतिक प्रकोपको कारण सापनका बच्यारा नासिबे सापनका डसाईका घटना ढिउ मिलाएका लगपा दे
4: झुर जसिन सापनका डसाई हानिकारक नि रहत उहो फे यदि सपवा डस डारल कलसे तुरन्त लगभग उपचार केन्द्रमा जा जाइ पर
1: विश्वास लग्ना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सक्दै था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिज्जैब? पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनेला बाट, अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना, कबू कमर घूम जाए तो था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
3: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
3: हो र
4: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
3: के छ त विकल्प?
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खाने कुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
4: अहँ हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ,
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।
1: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
5: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
1: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हरटीकापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐतिबाट मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 और 9806477।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो कहा कना हो। बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरा भर भर बराई थी राहत
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले।

0: कथा कही था बढ़िया ठंड से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लन बहुत तो कहाँ उठी कापुर मरलक रट गई या झोला उड़ोक मसे वहाँ झिंगलान दीदी कटरा से गुर झोला आन लगाती ना कबूल लड़का कहाँ पी रही थी ना कबूल पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बातें ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठिन
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई या झोला उद्योग में रत गैया झोला उद्योग
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे ठारू भाषा खोज खबर में यहाँ उग्रन स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी की राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली फात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से। उपलब्धि के रक्षा और समृद्धि के संकल्प सहित आज 19वां गणतंत्र दिवस मनाई थी। नेपाल सरकार के बजट पे आज ही सार्वजनिक हुई थी। आंधीहुरी के कारण टीकापुर क्षेत्र में गैर रात से विद्युत सेवा अवरुद्ध। टीकापुर के कार्यवाहक नगर प्रमुख के जिम्मेवारी में बलिराम चौधरी। सिकल सेल एनेमिया थलसेमिया लगायत के रोग के सचेतना के लग अभिमुखीकरण उपचार से विरम्याहुकरण उपचार में विरम्याहुकरण समस्या प्रति। नेपाल में एशियाली खेलकूद महिला क्रिकेट छनौट के सेमीफाइनल में प्रवेश। आप पूरा खबर। नेपालमा निरंकुश राजतन्त्र के अन्त्य हो के संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा हुलक ऐतिहासिक दिन के स्मरणमा आज देशभर 19वां गणतन्त्र दिवस भव्यता के साथ मनाइटिबा। तत्कालीन 7 राजनीतिक दल के शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो नेकपा माओवादी के सशस्त्र संघर्ष के जगमा 2065

0: संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक गर्न बताएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशके मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह लम्कीचोहा प्रादेशिक अस्पतालके उद्घाटन गर्नेबाटै प्रदेश अस्पतालके घोषणा हुइलक। लम्बा समयसम्म फे लम्कीचोहा नगरपालिकाके नगर प्रमुख सुशीला शाहीके कारण उद्घाटन तथा अस्पताल संचालन कार्य प्रभावित हुइति गेल रह। पटक पटक के प्रयास पाछे मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह औ सामाजिक विकास राज्य मन्त्री सरस्वती खड्का प्रादेशिक अस्पताल के बोर्ड अनावरण करके उद्घाटन करल के हो। अस्पताल के उद्घाटन करती मुख्यमंत्री शाह जनता नई जनार्दन रलक बटोईटी, जनता के मांग व आवश्यकता से फिर भारी बात और कुछ नई हिस्सेकना बटोईटी, इस क्षेत्र के विकास के लाख सबको जाने मिलना के विकल्प नहीं रहा बटोले बाट। अस्पताल उद्घाटन कार्यक्रम में सामाजिक विकास राज्य मंत्री सरस्वती खड़का, सामाजिक विकास मंत्रालय के सचिव डाक्टर हेमराज रेग्मी, प्रदेश के पूर्व मंत्री तथा प्रदेश सभा सदस्य रामेश्वर चौधरी, लम्कीचोहा नगरपालिका के नगर उप प्रमुख जुना चौधरी लगायत के उपस्थिति रहल रह। आपने नगर में विशेषज्ञ सहित के प्रादेशिक अस्पताल संचालन मायल पाछे नगरवासी उकरण में समेत उत्साह छाइलवा। नगरवासी उकरण के मुख्यमंत्री राज्य मंत्री हे पंचे बाजा सहित तमाम सांस्कृतिक झांकी से स्वागत करगिल रह। प्रादेशिक अस्पताल संचालन आयल संगे अब भलका ओ समेत चुहा से एक साथ विशेषज्ञ शुरू हुईना मंत्रालय से जानकारी दहलवा। उद्घाटन अस्पताल उद्घाटन कार्यक्रम में नगर प्रमुख सुशीला शाही सहभागी नई रहल कहती स्थानीय एसएफए आक्रोश व्यक्त कर रह। टीकापुर क्षेत्र में गैल रात से विद्युत सेवा अवरूद्ध हुई आयल बा। गैल रात के अलग आंधी हुरी के कारण इस क्षेत्र के तमाम स्थान में विद्युत पोल में छिटी पुगलक ओर से विद्युतीय समेत अवरूद्ध हुईलक बटागिल बा। आंधी हुरी के कारण टीकापुर और आसपास के क्षेत्र में विद्युत के पोल तार में छिटी पुगल पाछे विद्युत अवरूद्ध हुईल। नेपाल विद्युत प्राधिकरण शाखा टीकापुर से जनायल बा अवरूद्ध हुईलक विद्युत सेवा सुचारू रूकेलक पहल हुईती रलक ओर से विद्युत प्राधिकरण शाखा कार्यालय टीकापुर से जनायल बा। हावाहुरी से ढेर स्थान में छिटी करलक कारण विद्युत सेवा सुचारू समेत हुईना कुछ समय लागे सेकना बताइते आयल बा। खोजखर में एक घड़ी विश्राम, विश्राम पास फिर से भी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
2: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टीकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान साठी अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849585808।
0: विश्राम पाछि फेर स्वागत बा। टीकापुर नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख के जिम्मेवारी बलिराम चौधरी है प्रदान करगिल बा। नगरपालिका के कालिक बैठक कार्यपालिका बैठक से वार्ड नम्बर 6 के वार्डाध्यक्ष चौधरी हे कार्यवाहक नगर प्रमुख के जिम्मेवारी प्रदान करगिले खो। ये आगे कार्यवाहक नगर प्रमुख में राम बहादुर नगाजी हे समेत विदा करके कार्यपालिका के बहुमत सदस्य से चौधरी हे कार्यवाहक नगर प्रमुख के जिम्मेवारी प्रदान करल नगरपालिका से जनायल बा। स्थानीय सरकार संचालन एन 2074 के दफा 116 में रलग व्यवस्था अनुसार वार्डाध्यक्ष चौधरी है कार्यवाहक नगर प्रमुख के जिम्मेवारी प्रदान करगिल नगरपालिका से सार्वजनिक करक निर्णय में उल्लेख करल बा। टीकापुर नगरपालिका के नगर प्रमुख में रामलाल दंगौड़ा थारू राजीनामा दे के फागुन में सम्पन्न हुईलक प्रतिनिधि सभा के चुनाव में उम्मीदवार बनलक। टीकापुर नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख के जिम्मेवारी कार्यपालिका सदस्य राम बहादुर नागाजी हे प्रदान करगिल रह। बाल बालिका के तथा समेत

0: किशोर किशोरियों के मानसिक स्वास्थ्य समस्या पहचान तथा प्रेषण समेत संबंधी अभिमुखीकरण टीका कैलाली के टीकापुर के सामुदायिक विद्यालय में करगिलवा शिविर नेपाल बाल हेल्पलाइन कैलाली के आयोजना में टीकापुर में तीन ठो सामुदायिक विद्यालय भजनी में कार्यक्रम करगिलवा जेठ 11 गते कैलाली के भजनी स्थित मोहनयाल मावि में 12 गते राष्ट्रीय मावि बेलुआ उसके 13 गते त्रिभुवन मावि बतनपुर बिहीबार कर्णाली मावि टीकापुरमा शिक्षाको विद्यार्थीकरण अभिमुखीकरण करगिलवा विद्यालयमा किशोरी रूपान्तरित समेत विकार बहल पाछे टीकापुर नगरपालिकाके माग अनुसार पालिकाके समन्वयमा बाल हेल्पलाइन साइकोलोजिस्ट समेत लानके सचेतनामूलक कार्यक्रम करगिलेख हो चारथो विद्यालयके सयौं बाल बालिका हो शिक्षक उपकरण अभिमुखीकरण करगिल शिविर नेपाल बाल हेल्पलाइन कैलालीकी जिल्ला संयोजक हिरालाल चौधरी बटोले कान्ति बाल अस्पताल के सीनियर साइकोलोजिस्ट अंजना कुमार ढकाल के अनुसार हरेक बाल बालिका में तनाव जन्ने समस्या लागू औषध उसके सेवन से लागलग समस्या में बाल बालिका हुकरण में ढेर पागिलवा वहां कान्ति बाल अस्पताल मन से फोकल शिक्षक मार्फत समस्या में रहल बाल बालिका हुकरण ऑनलाइन सेवा समय देह सेकना बटवागिलवा ढकाल के अनुसार समस्या में रहल सक्कु बाल बालिका हुकरण ऑनलाइन से नहीं चिकित्सकीय सेवा देना मानसिक समस्या के विद्यार्थी हुकरण पहचान केला शिक्षक हुकरण समेत अभिमुखीकरण करगिलवा कार्यक्रम में कान्ति बाल अस्पताल के सीनियर साइकोलोजिस्ट ढकालो साइकोलोजिस्ट अनिल शर्मा से बाल बालिका और शिक्षक हुकरण संगे विकास संबंधी विकार चिंतन उसके व्याग्रता तथा तनावजन्य समस्या उदासीनता उसक बौद्धिक अपांगता अटिजम तथा बाल बालिका में गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या कन्वर्सन डिसऑर्डर समेत बाल बालिका हुकरण के पढ़ाई में ध्यान केन्द्रित करना नैसेकना वा समेत ज्यादा समेत चकचके स्वभाव से बारे में जानकारी दे गिलवा एक साथ ही समस्या में पड़लक बाल बालिका हुकरण से ले सेकना सहयोग और सलाह के बारे में फिर जानकारी करा गिलवा समस्या में पड़लक बाल बालिका हुकरा 10-9-8 में फोन करके परामर्श ले सेकना सुविधा रहलबा ई फोन करके समस्या में पड़लक बाल बालिका हुकरण के तुरंत उद्धार करने व्यवस्था रहलबा बाल हेल्पलाइन कैलाली में सन 2025 में 322 घटना दर्ता पड़लबा जम्मा 196 बाल बालिका हो 126 बालक रहलबाट हेल्पलाइन में 2442 टेलीफोन आयल वो 4223 जहान सेवा सचेतना जगा सकलबा 16 बाल बालिका हो 2 बालक करके 18 जहान है कानूनी सहायता दैगिलवा 2 बालिका ओ 19 बालक करके 19 जहान है आपातकालीन संरक्षण समेत दैगिलवा कलश संस्था से 61 जने बाल बालिका हो 47 जने बालक करके 108 बाल बालिका हुकरण शैक्षिक सामग्री प्रदान करगिलवा। सिकल सेल एनेमिया थलासेमिया लगायत के रोग के सचेतना के लाख टीकापुर में अभिमुखीकरण कार्यक्रम होलबा अभिमुखीकरण में सिकल सेल एनेमिया थलासेमिया रलक बिरमिया उकरण उपचार में सहस्त्र के लाख समेत नहीं कहके गुनासा करलक बाट सिकल सेल एनेमिया में समेत क्लिनिक प्रोटोकॉल डेवलपमेंट एक्सपर्ट तथा वरिष्ठ कंसल्टेंट डॉक्टर राजन पांडे के अनुसार जनस्वास्थ्य समस्या के रूप में रलक वंशानुगत रूप में सर्ण रोग सिकल सेल ओ समेत थलासेमिया दुनून के प्राथमिकता दई के काम करे पर्ना बतौले बाटे कैलाली के टीकापुर में आयोजित सिकल सेल एनेमिया थलासेमिया लगायत के रोग के समेत सचेतना के लग पालिका स्तरीय अभिमुखीकरण तथा अंतरक्रिया कार्यक्रम में डॉक्टर पांडे से सिकल सेल के तमाम समस्या निम्टैटियल बटोईटी एक साथे समेत बुद्धि पुगा के वंशानुगत रोग हे शून्य में समेत झारा सेकना बटवागिलवा टीकापुर नगर पालिका के आयोजना में हुईल कार्यक्रम में बच्चा रोगी हुईना के लाख समेत दुई रोग के समेत बच्चा के रोगी हुईती रहल बटोईटी बाटे एक जाने बिरामी और निरोगी रलक बच्चा में बाहेक हुईना ओ एमना समेत फे परामर्श लेना विवाह समेत करलक बच्चा के निगरानी समेत जन महिनामा बटवागिल्बा तथ्याङ्क अनुसार सबसे ढेर सिकल सेल के बिरमिया नाइजेरियामा बाटकलसे छिमेकी देश भारतमा सन् 2047 सिकल सेल के निवारण गर्न लक्ष्य समेत ल्याइगिल्बा। नेपालमा थारू जातिमा 11% सिकल सेल बाकलसे जम्मा 10% बाहेक के समेत 1% रोगी रहल बाटै लड़का प्रकरणमा एक जाने समेत नर्मल रलसे और रोगी रलक वस्तक भोज गर्न फरक नै पर्न उहाँके कहाई रहलबा। कार्यक्रममा स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली केसिकल सेल फोकल पर्सन विमला गेवालीसे ऐन दिनमा प्रशिक्षण प्राथमिकता देना वस्तक विवाह कुण्डली के बारेमा ढेर परामर्श दे पर्न आवश्यक तरहर बटोले बाट सिकल सेल प्रभावित हुक्रन के से दुख पैचरलक बटोटी परामर्श तथा निदान के लग काम स्वास्थ्य वस्तके केन्द्रमा खोल्न समेत टिगापुर नगरपालिका के पहिल प्राथमिकता रहल बटोले बाट गेवाली 2081-82 कैलालीमा 28761 जहान के स्वास्थ्य परीक्षण करबेल सिकल सेल की बिरमिया 740 जाने फेला परल बाट टिकापुरमा केन्द्र संचालन वस्तको कैलाली गाउँपालिका से बिरमिया उक्रन 1000 यातायात खर्च उपलब्ध कैद रहल जानकारी करा गेलवा। टिकापुरमा 1914 जहान के रगत परीक्षण करबेर 326 जहानमा सिकल सेल टेस्ट ओ समेत 80 जहानमा कड़ा सिकल सेल रोग देख परल नगरपालिका से जनाइलवा। टिकापुर जनस्वास्थ्य निरीक्षक केवल सिंह सार्की के अनुसार 1,83,00,000 समेत बनल बहुउद्देश्य भवन के स्वास्थ्य सेवा देना प्रयोग करते अलग बटवागिल बा वहां एकीकृत मॉडल में समेत स्वास्थ्य सेवा देना प्रयास हुई बटवैती शहरी स्वास्थ्य आवश्यकता वस्तक सिकल सेल न्यूनीकरण में प्राथमिकता अलग ओर से इस सेवा शुरू कर गिलक बटवागिल बा। सिकल सेल थलासेमिया के कारण छाई में विराम रह के नियमित समेत रगत चढ़ाई पड़ती अलग वो अपना उकरण एकदम कठिनाई होती रहल एकजाने अभिभावक पटोले बाट पुस्तके और जाने सिकल सेल थलासेमिया के बिरमिया अपना उपचार लगायत के कोनोमा फेर समेत कठिनाई भोक्ती रलक बटवागिल बा। टिकापुर अस्पतालमा ल्याब पुस्तके टेक्नोलोजिस्ट मरीजमान भूल से फेर परीक्षण करना विधि बारे में समेत जानकारी करा गेल रह। कार्यक्रममा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलबहादुर रावल से स्वागत कर गेल रह कलसे कार्यक्रममा सह संयोजक कमल बहादुर रावल संचालन कर रहे हैं। टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 से रैथाने पद्धतिमा विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी 2 दिने तालिम प्रदान करलबा। 2 चरणमा करके 2-2 दिन के दर से 4 दिन तालिम संचालन करलक हो। जेठ 11 और 12 गते एक ठो कले से 13 और 14 गते और करके 2 ठो तालिम संचालन करलक हो। तालिममा वाड़ा भीतर के बरघर सामुदायिक वन के पदाधिकारी स्वयंसेविका टोल विकास संस्था के पदाधिकारी सहभागिता जनाइल हैं। तालिममा सहभागी तालिम मन से सिकाई मजा सिकाई हुई बटोले बाट तालिममा सहभागी बन्दीपुर के बरघर पल्टू राम घोटैली तालिममा बने जन्तु उक्रन के वासस्थान सुरक्षित धरपरट सपोर्ट देखना लगत्ते मारे नहुना जथाभावी रूपमा ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्न नहुना बातमा सिकाई हुई बटोले बाट स्वयंसेविका सुशीला चौधरी से बरसात के समयमा बाढ़ आके झापखाला लग्ना उसका तालीम में अपना यह से बचना उपाय के बारे में सीखना मौका पायलो ई व्यवहार में समेत लागू कर पर्ना बटोले बाट रानी कर्णाली सामुदायिक बनवा के अध्यक्ष रमेश विश्वकर्मा से तालीम के समय सपेक्ष अलग बटोटी सकू जाने ई तालीम में फरक फरक विषय में समेत संचालन करला से मजाविना सुझाव देले बाट टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 2 से आयोजना करलक तालीम है। टीकापुर नगरपालिका के विपद व्यवस्थापन समिति व शाखा के पदाधिकारी तथा कुछ सरकार वाला हुकरा से सहजीकरण कर गिल रहा। खोजखर में एक घड़ी विश्राम पास फिर से भी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: जानकी गांव पालिका को अत्यंत जरूरी सूचना। नेपालको संविधानको भाग तीन मौलिक हकको धारा 39 अन्तर्गत बालबालिकाको व्यवस्था भएको र बालबालिका ऐन 2075, बाल श्रम ऐन 2056, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 समेतलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन 20 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरूले विवाह गरे गराइएमा भागे भगाएमा दुवै पक्ष कानून बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले 20 वर्ष मुनिका विवाहहरू विवाह दर्ता नहुने र स्वतः बदर हुने भएकोले आफू सचेत भई अरूलाई सचेत गराई कानूनको पालना गर्न गराउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई निकृष्ट प्रकारको श्रम जस्तै मोटर, ग्यारेज, होटल, कारखाना, गिट्टी, बालुवा, घरेलु कामदार, गाडीमा सहचालक नलगाउन साथै धूम्रपान, मध्यपान, सुर्तीजन्य पदार्थको खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा बाल बालिकालाई संलग्न नगर्न हुन हार्दिक अनुरोध छ। यदि कसैबाट कानून विरूद्धका कार्यहरू भए वा गरे गराइएमा कानून बमोजिम कार्यवाही हुने बेहोरा सम्पूर्ण गाउँवासीहरूलाई जानकारी गराइन्छ।
2: अध्यक्ष गणेश चौधरी, बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँपालिका जानकी कैलाली।
3: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
4: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
3: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई गो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
0: याद कर भी मनीष मेडिकल हर्टिगापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐतिबाट मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर। फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
5: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति मा नियुक्त केलक समेत पलक आवेदन मध्ये 18 जहन के आवेदन समेत स्वीकृत हुई बा। शिक्षा तथा युवा खेलकूद मन्त्रालय से सार्वजनिक करलक विवरण अनुसार स्वीकृति आवेदक हुकरण के नामावली सार्वजनिक कर गिलेख हो। स्वीकृत आवेदक हुकरण में पाल्पा के कृष्ण प्रसाद पाठक, कैलाली के अग्निराज कोईराला, राजेन्द्र जोशी, कंचनपुर के राजकुमार साउदो, खेमराज जोशी रहलवाटे, ओस्तकर के काठमाण्डौ के चेतराज भट्ट, शेखर अर्याल और राम प्रसाद घिमिरे के आवेदन फिर स्वीकृत हुई मंत्रालय से जनाइल बा। ओ महिला नेपाली महिला क्रिकेट टोली एसियाली खेलकूद महिला क्रिकेट छनौट अन्तर्गत समूह बी के खेलमा इण्डोनेसिया पराजित गर्दै सेमीफाइनलमा पुगल बा। मलेसिया के क्वालालम्पुरमा 22 ओभरअल क्रिकेट मैदानमा हुइला खेलमा नेपाल इण्डोनेसिया उपर 4 विकेट से जीत निकर्ती प्रतियोगिता के सेमीफाइनलमा पुगल के हो। प्रतियोगितामा नेपाल यी लगातार दोस्रा जीत हो। यी आगे खुला खेलमा नेपाल चीन उपर 19 रन से शानदार जीत निकाल रहकलो से कालीखुल खेलमा इण्डोनेसिया नेपाल हे जीत केलक 144 रन के लक्ष्य देल है। जवाफमा नेपाल 19.3 ओभरमा 6 विकेट के क्षतिमा पूरा करल के रहे। यही समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। उपलब्धि के रक्षा और समृद्धि के संकल्प सहित 19वां गणतंत्र दिवस नेपाल में मनागेल, नेपाल सरकार से बजट फिर सार्वजनिक आज करती। आंधी हुरी के कारण कैलाली क्षेत्र टीकापुर क्षेत्र में गैल रात के सिलई के विद्युत सेवा अवरूद्ध, टीकापुर के कार्यवाहक नगर प्रमुख की जिम्मेवारी में बलिराम चौधरी। सिकल सेल एनेमिया, थलसेमिया लगायत के रोग के सचेतना के रख अभिमुखीकरण उपचार में विरम्या होकर सस्ती खेप्ती हो। नेपाल एसियन खेलकूद महिला क्रिकेट छनौट में सेमीफाइनल में प्रवेश। एटा बक्लक थारू भाषा खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्याह्न खबर सुनसकी अब्बे के खोज खबर से मैं रतन चौधरी विदा हुतु सामुदायिक रेडियो टिका एफएम सुनतिर विराम राम
6: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
7: जेठ 16 गते शनिवार का दिन
8: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
6: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बडी रिसाउने, झिझो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागू पदार्थ सेवन गर्ने,
8: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
7: डाक्टर आउने दिन जेठ 16 गते शनिवार।
9: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ।
10: याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
9: सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637
11: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वनन्दे भोज आगिलि न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना हुने न पट्टा नि पैना त
12: अनि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आतु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
11: तुहार बाट अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मा से गहना बना कान से के कतरा सुगर बना कान लबाटी
12: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई और जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
11: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 9864841208 और 9846239261।
13: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: रोका
1: के भयो किन कराएको यस्तो
0: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
2: इन्सिलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
0: हो र हो नि इन्सिलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
3: आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 123 ह्यास डायल गरी वा एनसेल एप मगाई लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि
4: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो
5: कुटपीट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नाई देना बोले नाई देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई
4: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नाई बैठबी ओसीएमसी स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी
5: अठवा पैसा नाई लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी ओ सीधा अदालत में थे जय से जय
4: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाए सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली

0: काहुल बाबू अपने कल का लाइट रही अपना काकर कल का लाइट रही ले भुइया में के हो काकर भुइया में ढनवा नाल बाटी
1: सुनी ना दादू हमरा दुनू जना बना में घास काटा रहल रही मर संग में सब पका दर की ना दादू हाल क्या करना हुई यही ना सत्य हो पता के नौ पुगार पहले से हुई रहा
0: ओहो ऐसी बेला में एम्बुलेंस और चार गोरिया मोटर जो खोज के असिया लाग के बैठे नहीं हुई यह लगे बस्ती में मोर एक जाने मोटरसाइकिल वाला संघरिया बा फोन कई दादू अपने नहीं आता है ना संघरिया ध्यान दी हेलो मुकेश तू जबते ही मोटरसाइकिल लेके यहाँ आ जाओ यहाँ एक जना बाबू है ना सपवा काट के ना इमरजेंसी पर गिल तुरंत ही उपचार केंद्र में ले जाए पड़ल राजमार्ग चौराहा 100 मीटर पश्चिम बाव पांचर बाटी ना हमरा मुकेश जबते ही आओ हाँ सबको काम छोड़ कर
2: बेटा संतोष मैं मोटरसाइकिल लेके आई गिनू
0: सुनी बाबू सपो कटलक मने है ना जतरा साइकिल झटते ही एंटी वेनम उपलब्ध हुई उपचार केंद्र में ले जा रहे पड़ता ऐसी बेला में सबसे झटते हुई ना यातायात के साधन वाजे पड़ता यदि मोटरसाइकिल के व्यवस्था बाकल से अपने वो सवारी चालक के बीच सपो कटलक मने है ना सुरक्षित हुई ना मेर से बैठा कर तुरंत उपचार केंद्र पुगाई पड़ता मुकेश मोटरसाइकिल लेके आ गई मोर भरपर में संघरिया मैं तुरंत बेरे में है ना मुकेश के मोटरसाइकिल में बीच से बैठा कर उपचार केंद्र पुगा डार तू अपने मोटरसाइकिल लेके ओरी आई
1: लगा
3: दे दादू सात दस से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र जाकर जान बचाई
4: यदि समय में जो उपचार कर सकल से सांप डसलक मन बचाई सक दी था वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर सक दी था सांप डसलक मन न छट्ट से छट्ट उपचार केंद्र में ले जा डारी यही ले ऊ मन एक जीवन बचाए भारी मदद कर था विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैठ पत्ता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट।

0: nepal.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सकती था।
1: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
2: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: हुक्का पिए रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर होस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कभू लड़का कभी हेरा कई था कभू पेंसिल हेरा कई था कभू झोले फटाका था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लन बहुत कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला दस कटरास बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: ए बा आइकै क्या, आज त पहिला नोकरीको पहिला महिना तनखा खाइकन आएकी होली मेरी चेली।
1: तनखा खाइकन होइन बुवा, तनखाले भोलिका दिन कि ढुक्क पारिकन आएकी छु। हो भने बुवा, पहिला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु। सिटिजन लाइफ नि त कस्ता राम्रा राम्रा योजना रहेछन्। भाइका लागि बाल भविष्य योजना, तमिरे आमाका रिटायरमेन्टका समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना, वाँची मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ। तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन, त्यसैले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे।
0: ठिक गरिबा, आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ। हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन, तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ।
1: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त, होइन बुवा? सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स, जहाँ भरोसा र भविष्य सँगसँगै हिटो छ। झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01-5970-217 नि सम्पर्क हरे।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
3: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा, जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी, मनीष मेडिकल हरटिकापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐतिबाट
5: मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
6: ए सन्तेकी आमा, पर कान्छा खालाको बिहाको न्युज आएको छ, कसो त जाने विचार छ कि नै त?
7: आफ्ना कान्छा भाइको बिहे नगरिकन पनि भएन, जाउँ भने भयाको मंगलसूत्र बन भाँची गयो।
6: यो टिका लागि त सामुएल जोलस बनेको है, बरु अहिले जाउँ, एक दुई दिनमा त फ्याट्टै बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ।
7: आज त सन्त्याका बाले मनकै कुरो हर्यो, होट त बाई जाउँ।
8: सामुएल ज्वेलर्स सुनसादीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनसादी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर टिहारी सिंह सुनार, सम्पर्क नम्बर 9868-44-1208, 9846-39-261।
9: सूचना सूचना सूचना, महापार्वती मेडिकल जोशीपुरमा यही जेठ 16 गते शनिबारका दिन वरिष्ठ मानसिक नशा मनोदीप तथा लागू औषध रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप देवकोटा एमबीबीएस एमडी बिरामी जाँच गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा लिनुहोला। डाक्टर आउने मिति यही जेठ 16 गते शनिबार, समय दिउँसो 1 बजेदेखि। सम्पर्क स्थान महापार्वती मेडिकल जोशीपुर कैलाली, मोबाइल नम्बर 9216-14306 र 9846-39785।

जिरापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार और बिहीबार बिरामी जांच कर आने भाई छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामी विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली। विद्युत महसूल भुक्तानी सम्बन्धी सूचना। 2083 असार 1 गतेबाट टीकापुर वितरण केन्द्र र लंकी युनिट कार्यालय अन्तर्गत संचालित विद्युत महसूल काउन्टर बन्द गरिने लक्ष्य राखिएकोले विद्युत महसूल अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी गर्न हुन सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। विद्युत महसूल अनलाइन भुक्तानी गर्ने समय बिहान 8 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टीकापुर कैलाली।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटा का आज कहा कना हो कहा कना हो। बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान निहर।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लनबो वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जेबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर रामप्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: कतै भुक्छे,
1: कतै बाढी,
2: कतै पहिरो,
0: जलवायु परिवर्तनले मानव जीवनमा चोट पार्छ गहिरो,
3: त्यसैले वृक्षारोपण गरौं, जंगल बचाऊ, भूक्षयबाट जमिन जोगाऊ।
0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: ८० प्रतिशत रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
5: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
6: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
4: डेलिभरीका लागि
6: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
4: टिकापुर कैलाली
7: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106672।
8: स्वास्थ्यका लागि पानी।
9: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
10: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
9: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
10: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
11: याद कर भी मनीष मेडिकल हरटिकापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐतिबाट
12: मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो दंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालू खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ट रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
11: डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार
12: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: दाई नाचबा कहाँ जाइ लग्नुट
1: पेसाब लाटा चर्पी जाइ टुका
0: ए रुको नाट पछिन हो कलसे मै टर्च लाइट लट्ठी भेटु लेख जाव
1: काचे चुनु लट्ठी वा टर्च लाइट
0: का कर रही दाई राटिक डाला बाहे निक्र पर्लसे वा टोयलेट जाइ पर्लसे जहिया फे टर्च लाइट बार्ख को लम्बा लट्ठी लेख के जाइ पर्था का कर कि बर्खा छ्याक्बा साँप रहस्य ठ टर्च को अजराले सापन ड्या खसेक जाइ था वो लट्ठी ठ्याक ठ्याक आओ सुनख साफ भक्त का
1: हो कतरा मजा सल्लाह डेली मार छोटकी छाई
0: दाई हमन्ना स्कूलिक मैडम सर मुख साफ मुख सिकना ठाउँ सि ल्याङ पर्लसे वो काम कर पर्लसे जहिया फेठ फुस्यार विपथा गई सिखैल बाट का आम छेटवा दिभा झपा अथवा झ्याङ्गा चलक ठाउँमा ल्याङ पर्लसे लम्मा लट्ठी देख ठ्याक ठ्याक बजेटी ल्याङ पर्था गई कल बाट
2: साफ बर्खा छाकक समयमा सुक्खा ठाउँमा बैठ मन परैछ यी मौसममा आफन बस्यारामा पानी पैसा पिला कोर्से सुक्खा ठाउँको खोजीमा उपरा बाहिर निस्कठ
1: मुस मुर्गी जसिन आहाराको खोजी गर्न क्रममा फेर साँप मानव बस्ती लग्न आइसक्छ विश्वास लग्ना ओ सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहेसेक जैठा
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण

0: बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
1: प्रोपराइटर रामप्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जनाऊ का ना घर हेरो ना, कटा सुगुर बनेल बाट। आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, वट्र फे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541326।
3: ए रुको रुको रुको
4: के भयो किन कराएको यस्तो
3: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिन सम्म अनलिमिटेड रे
5: एनसेलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभीजको फ्री एक्सेस पनि
4: हो र
3: हो नि एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
6: ओहो आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 123 हास डायल गरी वा एनसेल एप मगाइ लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि।

0: सूचना सूचना सूचना महापार्वती मेडिकल जोशीपुरमा यही जेठ 16 गते शनिबारका दिन वरिष्ठ मानसिक नशा मनोदीप तथा लागू औषध रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप देवकोटा एमबीबीएस एमडी बिरामी जाँच गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा लिनुहोला। डाक्टर आउने मिति यही जेठ 16 गते शनिबार, समय दिउँसो 1 बजेदेखि। सम्पर्क स्थान महापार्वती मेडिकल जोशीपुर कैलाली। मोबाइल नम्बर 98216 14306 र 98486 39785।
1: भ्रष्टाचार करो या मनन खुल्के विरोध करी, भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण कर क्लाग सक्कु जाने सहयोग।

0: बुका पिएर इठ कबु पेन सिलेर इठ कबु झलै फटाका आज इठ काकना हो बाबा फिर उस्ता बाटिन गटिलो ठाउ से झोला आनल से त लड़का सामान नि हेरत
1: ओहो ई बुढा लिख में का हुई थी जरम भर भर बरई थी रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कै ठ कबु पेंसिल हेरा कै ठ कबु झोलै फटाका इठ बढ़िया ठाउ से झोला लान नि चिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम थ
0: कहाँ से लन बहु तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पियरी थी ना कबू पेंसिल रही ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटी ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रट गया झोला उद्योग में रट गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: विजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: विद्युत महाशुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सूचना। 2083 असार 1 गते से टीकापुर वितरण केन्द्र हो लम्की यूनिट कार्यालय अन्तर्गत के संचालित विद्युत महाशुल्क काउन्टर बन्द गर्न लक्ष्य रलको से विद्युत महाशुल्क अनलाइन माध्यम से भुक्तानी गर्न सक्कु ग्राहक महानुभाव फुकरन यह सूचना से जानकारी कराई थी। विद्युत महाशुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्न समय बिहान के 8 बजे से रात के 12 बजे सम्म। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टीकापुर कैलाली।

0: सुनो तो, आई जाओ एक चिट्ठी साले हो, पानी वानी पी ले हो।
1: चली भाई ये करे की सारी तो कर दे।
0: क्या बाबू पानी ले।
1: आम से टूर लाने हो ना।
2: असो बरा बढ़िया भी यार बावे ना बरे जूर बावे ले वो हर भाई फुगा दे
0: ले भैया ये फुगा दे
3: ले भाई पानी ले
1: अक्के घरिक बयाल अक्के घरिक पानी बरखा से हो गए।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हर्टिगापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐतिबाट मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटा का आज था का कना हो बाबा के उस टपाटीन गतिलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं है रे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कभू लड़का कभी हेरा कई था कभू पेंसिल हेरा कई था कभू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक था
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उद्योग मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गया झोला उद्योग में रट गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

प्राथमिकता दिनेछौं। अन्तर्देशीय तर्फ बुटवल गोरखपुर र इनरुया पूर्णिया प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनेछौं। ढल्केबर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी लम्की दोदोधरा बरेली लमही लखनऊ निजगढ़ मोतिहारी र चिलिमे हब केरूङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण शुरू गर्नेछौं। कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिनेछौं। राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरण

0: बुका पी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आज का कना हो बाबा फिर उस गतिलो ठाव से झोला आन लो लड़का सामान निहरा
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: कहाँ से लंग वो तो कहा टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहीं आनल झोला दस का टस बातिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: नरेन दादु मैं तो अपना फोन आई दौड़ती आ गई है भौजी कहाँ बाती
1: ओ गोंडे में सुटल बाती बाबू चोली न भरी
0: भौजी कहाँ से काटन अपना हरक आदर पावे तो सफा सुखर बने रहो बाती तर फिर पार्टी तो जा रहा अपना हन
2: यहाँ पोली को कत लगो नानी अपना एम्बुलेंस है खबर तो कर कटाबेर में को आपू ना हो
0: ना ते भौजी हमारा बाटी अपना हना कुछ नहीं हुई दिन गुआरा हना दिन चले गई वो नरेश दादू एम्बुलेंस में ना समय लागे से था लगे के मोटरसाइकिल बाक लगे उहे में बैठा के भौजी है ना सर पर उपचार केन्द्र ले जीना तैयारी करो पड़ल
3: ये बेला तक खाना जात फे दिए न्यू इतना स्वयं सेविका दीदी
0: हो अपना ठीक कली डॉक्टर रो निकट सम गेरेमेन कुछ से खवाई नहीं हुई
4: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाए क्लास सपवा कटलक अंगान स्थिर बनेना प्रयास कर पठा तम्म कस गेलक लुगा गरगहना घरी पेटी मुन्द्री बाकल से फाफल करा दी गेरमने अक्टेले से झन समस्या भिना भेल कोशित गेरमने न शांत रह सहयोग कर पठा क्यूमने सपवा कटलक ठाव से ऊपर दौड़ी ले कस खबना के कठ असिक कर्ण से लक्त संसार में समस्या हुई सकता जेहीले करबेल सपवा दसलक शरीर का भाग काट ख फाक पौना अवस्था थे आई सिक्ठा
5: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेव दिठा
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
7: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकारी गरौं
8: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि
9: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो
8: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त
9: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला
10: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला सम्पर्क नम्बर 9854899213 इमेल ocmcticapur@gmail.com

0: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम, टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
1: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 मा वाणिज्य संकायमा भर्ना खुल्यो।
2: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083का लागि कक्षा 11 अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ। विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ।
1: पढाइ हुने विषयहरू
3: अनिवार्य नेपाली,
1: अनिवार्य अंग्रेजी,
3: सामाजिक गणित,
1: ऐच्छिक लेखाशास्त्र,
3: ऐच्छिक वित्तशास्त्र,
1: ऐच्छिक अर्थशास्त्र,
3: कम्प्युटर विज्ञान,
1: भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू,
3: भर्ना फारम वितरण जेठ 1 गतेदेखि,
1: भर्ना सुरु जेठ 3 गतेदेखि,
3: कक्षा सञ्चालन जेठ 25 गतेदेखि,
1: पठन पाठन समय बिहान 6 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म।
3: दक्ष अनुभवी तथा विषयगत विशेषज्ञ शिक्षकद्वारा सहजीकरण गराइनेछ।
1: स्मार्ट क्लासरूम तथा डिजिटल लर्निङ सिस्टमको व्यवस्था,
3: विद्यार्थी मैत्री, शान्त तथा सुरक्षित शैक्षिक वातावरण,
1: नियमित युनिट टेस्ट, विकली टेस्ट तथा मोडेल इक्जाम सञ्चालन गरिनेछ।
3: कमजोर विद्यार्थीका लागि विशेष सुधारात्मक कक्षाको व्यवस्था,
1: उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई मासिक तथा वार्षिक पुरस्कारको व्यवस्था,
3: समय अनुसार प्र्याक्टिकल प्रेजेन्टेसन तथा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङमा विशेष जोड,
1: आधुनिक कम्प्युटर ल्याब तथा इन्टरनेट सुविधा सहितको अध्ययन व्यवस्था,
3: अनुभवी करियर काउन्सिलरद्वारा भविष्य निर्माण सम्बन्धी मार्गदर्शन,
1: नेतृत्व विकास, व्यक्तित्व विकास तथा सार्वजनिक बोल्ने कला सम्बन्धी तालिम,
3: अनुशासन, नैतिक शिक्षा तथा सकारात्मक सोचको विकासमा विशेष प्राथमिकता,
1: अतिरिक्त क्रियाकलापद्वारा विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटन गराइने,
3: विज्ञान प्रविधि तथा व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित शैक्षिक भ्रमणको व्यवस्था,
1: सीसीटीभी निगरानी सहित सुरक्षित तथा व्यवस्थित विद्यालय वातावरण,
3: अभिभावक र विद्यालय बीच नियमित समन्वय तथा प्रगति प्रतिवेदनको व्यवस्था,
1: सीमित सिट भएकाले समयमै भर्ना सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ,
3: हाई डिग्री अफ डिसिप्लिन एन्ड एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट भएको।
1: थप जानकारीका लागि 091-560-738, 091-561-446, 98-48-43-31-79 र 98-48-43-36-77।
3: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली।
4: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दिय गुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
5: अरे गहना बनाइन त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ
4: तुहार बाटा तुहार रामपुरान दिदी ये नहीं सामुएल ज्वेलर्स में से गहना बना कान से कतरा सुगर बना कर लाटी
5: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई और जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
4: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 98-684-41-208 और 98-486-39-261।

0: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
1: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588080।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकलमा जाइस् त?
3: मै नै जाइँ, उहाँ आफ्नो अनुहार बिगारके घरसे बाहर नै निकर्छु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिकामा लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू, तब तू मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हरटिकापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐति बाटै मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रप, इग्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार,
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौनरोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: विद्युत महाशुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सूचना 2083 असार 1 गते से टीकापुर वितरण केन्द्र हो लम्की यूनिट कार्यालय अन्तर्गत के संचालित विद्युत महाशुल्क काउन्टर बन्द गर्न लक्ष्य रलको से विद्युत महाशुल्क अनलाइन माध्यम से भुक्तानी गर्न सक्कु ग्राहक महानुभाव फुकरन यह सूचना से जानकारी कराई थी। विद्युत महाशुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्न समय बिहान के 8 बजे से रात के 12 बजे सम्म। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टीकापुर कैलाली।

0: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम एक सय एक मेगाहर्ज
1: भ्रष्टाचार करो या मनन खुल्के विरोध गरी भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकी एकाधिकारी महेन्द्र नगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश

0: बुका पिए रही था कभी पेंसिल ले रही था कभी झोले फटा का आज का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गया झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गया झोला उद्योग में रख गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरमत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: सूचना महापार्वती मेडिकल जोशीपुर में यही जेठ 16 गते शनिवार का दिन वरिष्ठ मानसिक नशा मनोदीप तथा लागु औषध रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप देवकोटा एमबीबीएस एमडी बिरामी जांच गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा लिनुहोला। डाक्टर आउने मिति यही जेठ 16 गते शनिवार समय दिउँसो 1 बजेदेखि सम्पर्क स्थान महापार्वती मेडिकल जोशीपुर कैलाली मोबाइल नम्बर 98216-14306 र 98486-39785।

0: Smartly download gunfos. NEPA app.
1: Pali man ko NEPA. Nepali pan ko NEPA.
2: जिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: नरेन दादु मैं तो अपना फोन आई की डर से आ गई नो है बहुती कहाँ बाती
1: ओ गोंडे में सुतल बाती बाबू चोली न भरी
0: हौजी कहाँ से काटन अपना न हरक आदर पावे तो सफा सुखर बने रह बाती था सर के पाती तो जा रहा ना अपना न
2: यहाँ पोली भूखा कटल हो नानी अपना एम्बुलेंस है ना खबर तो करना बाटा कटाबेर में को आपू ना हो
0: ना ते बहुजी हमरा बाटी अपना हना कुछ नहीं हुई दिन गुआरा हना दिन चलेगी वो नरेश दादू एम्बुलेंस लेना समय लागे ठीक था नगर के क्रो मोटरसाइकिल बाक ना थी उन्हें मैं बैठा कर बहुजी है ना सरपरल सा उपचार केंद्र ले जीना तैयारी करो पड़ल
1: ये बेला का खाना जात के दिए न्यू इट ना स्वयं सेविका दीदी
0: हो अब ना ठीक करी डॉक्टर और निकट सम जरमेन कुछ से खवाई ली हुई
3: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाए नाक सपवा कटलक अंगान स्थिर बनेना प्रयास कर पठा तम्म कस बेलक लुगा गरगहना घरी पेटी मुन्द्री बाकल से फफल करा दी बेरमया अकेले से झन समस्या बिना बिल कोशित बेरमया न शांत रह सहयोग कर पठा क्यूमने सपवा कटलक ठाव से ऊपर दौड़ी लिए कस खबर नाथे कठ असिक कर्ण से लक्त संसार में समस्या हुई सकता जेहीले करबेल सपवा दशलक शरीर का भाग काट ख फाक पौना अवस्था थे आई सिक्ठा
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइत लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेक दिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: टिकापुर नगरपालिकाको स्थानीय बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी जरुरी सूचना
7: नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा यही मिति 2083 साल वैशाख 28 गतेदेखि जेठ 3 गतेसम्म मूल्य पारदर्शिता सप्ताह मनाइरहेको बिहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ
6: टिकापुर नगरपालिकाबाट गरिएको नियमित बजार अनुगमनको क्रममा यस क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका व्यापार व्यवसाय पसल होटल रेस्टुरेन्ट औषधि पसल किराना लगायतका व्यवसायहरूमा बिक्री गरिने वस्तु तथा सेवाको मूल्य सूची राखेको नपाइएको हुँदा प्रत्येक व्यवसायीले बिक्री गरिने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको स्पष्ट र अध्यावधिक मूल्य सूची सबैले देख्ने स्थानमा अनिवार्य रूपमा राख्नु हुन सूचित गरिन्छ
7: प्रत्येक व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय अनिवार्य रूपमा दर्ता तथा नवीकरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ
8: बिक्री गरिने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको स्पष्ट मूल्य सूची उपभोक्ताले सजिलै देख्ने स्थानमा राख्नुपर्नेछ
7: उपभोक्तालाई खरिद गरेको वस्तुको बिल उपलब्ध गराउनु पर्नेछ
8: म्याद नागेका गुणस्तरहीन तथा अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन
6: बिक्री गरिने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको स्पष्ट मूल्य सूची उपभोक्ताले सजिलै देख्ने स्थानमा राख्नुपर्नेछ
7: खाद्य तथा उपभोग्य सामग्री बिक्री गर्ने व्यवसायीले सरसफाई तथा स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ
6: कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने कालोबजारी गर्ने तथा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्ने कार्य गर्न पाइने छैन
7: व्यवसायी स्थल वरपर सफा व्यवस्थित तथा सुरक्षित वातावरण कायम राख्नुपर्नेछ
6: बजार अनुगमनको क्रममा आवश्यक कागजात दर्ता प्रमाणपत्र खरिद बिल लगायतका विवरण अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्नेछ
7: नगरपालिका तथा सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएका निर्देशिका मापदण्ड तथा नियमहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ
6: प्रस्तुत मापदण्डको अनिवार्य रूपमा पालना नगरेमा प्रचलित नियमानुसार भइजाने बिहोरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ टिकापुर नगरपालिका कार्यालय

अब समुद्र मंथन करते जाता चौदरत्न तैयारी होना आटो तो चौदरत्न मध्य में सब भन्दा पहिला लाल कालकोट बिजनेस समुद्र मंथन करते करते जाते ते जाना भन्न लगे हरे कैलाश मानी नारायण शिवजी को कैलाश मानी।